0: What? There is a time bomb in flight number 125? Hello? Who is speaking?
1: फोन पर बताया कि फ्लाइट नंबर 125 में टाइम हो गया।
2: व्हाट?